ঘোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তরকস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ा दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ा दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इना कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नो जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नू पैदा कर देवे

다는 걸 원칭지 말아이다. 혹은 렛 베아리 모지코 식 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार, ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे दिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दे चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही, आसी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे, बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फूलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है? अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदि लाया गया, बस खोते ही रख होता है। सिर्फ सिर्फ केस ने, ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इना पंज ककारा नाल, कक्का के

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां शाखां अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखां दरख्तां दियां। हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार किया है। किधरे पीले रंग का किधरे गुलाबी रंग का किधरे चिट्टे रंग का इतने सुंदर शिंगारमय वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। यह मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है। मन की हालत कुछ होर हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है। सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देती है गर्म कपड़िया नूं एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनूं समा कहिंदे ने वक्त कहिंदे ने इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सौ गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदे संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां। एक गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हां प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है पशुओं नू जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदे आ चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात का चौथा पैर आरंभ होया है। चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने गऊं उठ बैठदिया ने बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊं दे सारे का सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नूं भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया
परमात्मा तो भी दूर हुंदा गया। परमात्मा दे निकट आण लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करदे सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करदा है। किंज ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियांदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहुंदा है। इस समा कहिंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे एक पल दी साधना बराबर हो जांदी है, समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, जे एक होए तां उगवे रुत्ती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल ओ प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, ओ पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ए जो रात दा चौथा पैर है, इस नू साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ए ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनू इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो स्वभावक अल्लाह नू चेते करा देंदी है। थोड़ी जिया भी किसे मनुख दे अंदर अंतरमुखी होने की जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाम। अंतिशकरण की धरती देच जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़दा है, बरकता नाल झोलियां भर जांदियां ने, और लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे विच पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमें बस आरजू कर। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले जिड़ियां संगतां थोड़े मार्ग ते चल पैंदियां ने, उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना। वो कदम बड़े पावन ने, वो चाल बली महान है। अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ, दरअसल परमात्मा दी चाल है। ये परमात्मा दी तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचण दा एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहंदे ने, थोड़ी जिया भी जिस किसे दे अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुत्ता रह गया है, मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबान शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिया भी बेदारी जागृति किसे दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਣ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਣ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਤੋ ਪਵਨ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਖਰ ਪਵਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਸਖਾਕ ਨੂੰ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ। ਜਤ ਕਥ ਸਿੱਖ

चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारी। हे परिपूर्ण परमात्मा, स्त्री के नाल मैं पतत दावी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पे है, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहेगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तों फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध च जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा। मिथ ए कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरणां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरणां ते डोले है ब्रह्मे ने, ए जल आण के गिरे है शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ए निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकल दी है, धारा छोटियां छोटियां जी लग दियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उना दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबले सुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने। एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। उसदे जल दी अपनी खूबी है। हर नदी दा जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखदे ने। यही कारण है कि जद कदी किसे दा कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करदे सन, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखण दे चाया है, वाकई टिकाणे दे बदल दिया, आब हवा दे बदल दिया, वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसे शरीर लई अमृतमई हो सकती है, जल किसे शरीर लई अमृतमई हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उना दी रसना तो निकले ते अमृत है। इते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन कन लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है। ते शरीर नूं स्वस्थ रखण देच गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही कम करदा सी, एक महान औषधि दा कम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी होई ए धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उना दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इस दा कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ होंदा है, शरीर दते इस जल दा अमृतमई प्रभाव पैंदा है। एक गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस देश कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा दे च पै रहने, महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहे है। महान गुनाह

साथ वरदाता, ब्रह्मा भालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो तांका, कंस छेद क्या वड़ा भया। तो ब्रह्मा सृष्टि दी टोल दे चल पिया, सृष्टि दी भाल दे चल पिया, संसार किने बने है? इस दी खोज दे चल पे। अगां चल के साढ़े देश दे ए गल प्रचलित हो गई कि ब्रह्मा संसारी है, संसार दे बनाने वाला नहीं, संसार दे बनाने वाला नहीं है, संसार किने बनिया इदा ज्ञान देन वाला है, संसार किने आलमे वजूद दे चाया, इदी बनतर की है और ये कित्थे तक पसरे होया है, इदा बहुत कुछ ज्ञान उसने दिता। क्योंकि संसार दे ज्ञान देते ही वेद खड़े ने, इस वास्ते ब्रह्मे नूं संसारी कह दिता। श्री कृष्ण ने इत्थे आके अर्जुन नूं कहा, त्रई गुणी वेद विशा नस्त्रई गुणी भवार्जुन। ए अर्जुन, वेद तीन गुणा दी गल करदे ने, संसार दी गल करदे ने, तू मेरी गल सुन, जो मैं कह रहा इस नूं मन, जो मैं कह रहा उस नाल जुड़ो, क्योंकि वेद संसार दी गल करदे ने। दरअसल संसार भी अपने थां दे उत्ते इतना महान है कि इहदी भी खोज होनी चाहीदी है, और खोज करन दिते ब्रह्मा चलिया, उसका शौक सी, उसकी ये बुक सी। जीवन की बहुपक्षी खोज ब्रह्मे ने की थी। संगीत का जन्मदाता ब्रह्मा है, कविता का जन्मदाता ब्रह्मा है, आयुर्वेदिक का जन्मदाता ब्रह्मा है, 84 लाख जून का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा है। मन दियां हालतां नौ ने, रंग नौ ने, सुरां सत ने, जबान दे रस छे ने, इस तरीके की खोज भी ब्रह्मा करता रहा, और बहुपक्षी खोज उसने जगत के सामने रखी। चूंकि दिमाग आप दे कोल दार्शनिक दा सी, फिलोसफर दा सी, आप दियां बारीक गल्लां हर मनुख की समझ दे च ना आईयां, इस वास्ते ब्रह्मे की प्रतिष्ठा साढ़े देश दे च कोई बहुत नहीं हो सकी, उहदे कोई बहुते बंदर साढ़े देश दे च नहीं बन सके। जिस तरह कदम कदम उत्ते विष्णु दे मंदर ने, इस तरह के कदम कदम उत्ते ब्रह्मे दे मंदर नहीं ने। कारण की सी, वह दार्शनिक सी, फिलोसफर सी, इतनी गहरी गल करदा सी, गावे को विद्या विखम विचार, इतनी बिखड़ी विद्या अगों रखदा सी, लोगां दी समझ तो परे दी गल सी, संसार दी समझ तो परे दी गल सी। और परे दी गल इस वास्ते करदा सी कि मनुखां दे अंदर परे जाण दी भुख पैदा कीती जा सके, दूर जाण दी भुख पैदा कीती जा सके। मनुख दा दिमाग जिथे है उथे तक दी ही गल कीती जाए तां मनुख दा दिमाग अगे नहीं जा सकदा, अगे बारे नहीं सोचेगा। तो बहुत अगे दी गल ब्रह्मा करदा सी, इस वास्ते उस दे आले दुआले कोई बहुती मनुखता कठी नहीं हो सकी, उसकी पूजा भी साढ़े देश दे कोई बहुत वड्डे पद्धर ते नहीं हो सकी, और उसके बहुत सारे मंदिर भी नहीं बन सके। इसका नुकता निगाह जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज इशारा करते ने, गावे को गुण वड्याई आचार, गावे को विद्या विखम विचार। तीसरा दृष्टिकोण जगत दे सामने रखे है शंकर ने, इन्हों का नुकता निगाह विष्णु ते ब्रह्मे नालों बिल्कुल न्यारा सी। उन्होंने जिस ढंग का ज्ञान जगत दे सामने रखिया, गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन उन्हों का जिक्र करते ने, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे। शिव जी दे गाण दा ढंग ए सी, गावे को साज करे तन खे, वे परमात्मा तन दी साजना करके फिर खे कर देंदा, जीवन बना के फिर ढा देंदा। मौत ही मौत है समगर जीवन विच, इत्थे सूरज बनदे ने बुझ जांदे ने, इत्थे धरतियां बनदियां ने मिट जांदे ने, इत्थे मौसमे बहार आंदा है खजां आ जांदी है, इत्थे मनुख जमदे ने मर जांदे ने। मौत ही मौत है, अंत ही अंत है। अंत दा दृश्य जगत दे सामने शंकर ने रखिया। कई दफा मुरदियां दी खोपड़ियां दी माला गल विच पा लैंदा सी, सिर्फ इस वास्ते लोगां नूं पता चले कि मनुख दा अंजाम ए ही है। वो अपने तन दे उत्ते राख मल लैंदा सी, स्वास

कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पाके, पुरुष जैसियां जुतियां पाके, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के और पुरुष दी तरह ही गंदे नशे जो है करके। स्त्री पुरुष जैसी तो नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हां, इन्हों बारों भी समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होण दी कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चमेली चमेली भी होण तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष दी बराबरी करनी चाहिए, पुरुष दी तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनिया ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाणे ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके। ते जद घर हो स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह, तो घर घर ना रहा, वो ते सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है, असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टूट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां दा प्यार नहीं मिलिया, मां दी गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उना दे प्रवेश नहीं कीती। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उत्थे औलाद भी सखणी होई। धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथ ही सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने, अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया विच इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री का पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष का इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी, और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे तो घर मंदिर बन सकता है, घर हरि मंदिर बन सकता है। नहीं ते उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होवेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री दा पक्ष पूरदे होया के है, जे कुछ महान मनुखां करके संसार दा इतिहास रौनकीला बने होया है, वाकई इना कुछ महान हस्तियां नू इतिहास दिचों कढ दईए, सारा संसार बेरौनक हो जांदा है, पर इना हस्तियां नू जन्म देने वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, तो ये फुल किथे खिड़ने सन, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नू बराबरी दिती। दैवी गुणा विच भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरबीरता

0: स्त्री पुरुष है लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणते जाइए, शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मान लीजिए, पर क्रांति शांति से आधारित होवे, सूरवीरता सहनशीलता से आधारित होवे और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे, ताई खूबी है और मानसिक तल ते आनंद है। जी मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इना दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते, सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने, अमृत दोवें पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी और पदार्थ दे तल ते दोहां दी बराबरी, किसे भी तल ते इस नूं पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया और हर तल ते इस दे गुणा नूं सलाहा गया, सन्मानिया गया। कहिंदे ने जद कोई पुरुष बंदगी करदिया करदिया पूर्ण पुरख बनता है तो उस दे अंदर स्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जाती है, उस दे बोलां विच भी स्त्री भाव आ जांदा है। जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल स्त्री भाव दे ने, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ए बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे ने कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरवीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है, इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखन वाले ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन विच वंडी हुई है। पशुआं नूं लईए, पक्षियां नूं लईए, बनस्पति तक नर और मदीन देच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नु देखिए, अस्तूल जगत नु देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम ईसाइयत यहूदी पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नू तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप देच कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक देच ए दो ने, और दोहां देच ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नो बहुत सोने ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियो, एक गल नु समझो, जानो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष। दोहां दा वजूद दोहां करके है, इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सकया, ये 60% पुरुष है, 40% इस देश मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, ये 60% स्त्री है, पर 40% इस देश पुरुष है। साढ़े देश ने नारी नो अर्ध अंग आख है, ये गल वखरी है कि कहन दा लब्बो ले जा अर्थ समय दे नाल बदले। नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इस दे अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूर्ण। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे च है, और पूर्ण होना चाहता है, जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है, पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उस दा नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। एति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, एति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुआं दी दुनिया च, पक्षियां दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आखे, ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नाने को करे ज्ञान नो राव आखे पुरुष आखे। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन का टिकाओ भावना लौंदा है, मन नु सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलती है, तर्क नाल मिलती है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी, स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नु चलाए मान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहे है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सौरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने, ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सौरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञान हीणी है, तर्क हीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है, ਇਸ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕਸਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਧਾ ਟੰਟੋਲ ਟਟੋਲ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅੰਧੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੰਧਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਅੰਧੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਤਰਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦਾ। ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸੁਭਾਵਕ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਕ ਜੋ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਮਰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ, ਦੇਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ, ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਨਿਨਾਹਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਫੈਲਾਓ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵਨ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕ ਦੀ ਦੁਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼। ਇਹ ਤੇ ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਹੀਨ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਂਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਪਾਂਚੋਂ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਦੁਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਹੈਰਾਨਗੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਕਿਧਰੇ? ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਰਮੋਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਸੰਗਤਰਾਸ਼, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਕ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। इस वास्ते आदकाल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पीछे ही चले, क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष ते पछड़ी हुई है, पीछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंगे है, दौर लंगे है, जिथे स्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान दी तरह, वस्तुआं दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी, जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी, इस दे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना दी गिनती दे च ओ भी आउंदा सी, इस दे कोल स्त्रियां ज्यादा ने, इहदे कोल 400 स्त्रियां ने, इहदे कोल 600 स्त्रियां ने, दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करने। इस दौर दे च भी ऐसे नवाब महाराजे होए ने, 400-400 राणियां और 600-600 बेगमां रखण वाले मौजूद, और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसे हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन दे च, स्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो ये जुर्म भी नहीं समझिया जांदा सी। जैसे कोई अपने सोने नूं चिकड़ दे सुट देवे, जैसे कोई अपने घर नूं आप ही अग लावे, कोई अपनी धन संपदा नूं साड़ देवे, तो अपना धन सी आप फूके है, कोई जुर्म नहीं, स्त्री एक धन सी खत्म कर देता है, कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघे है, और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री दे अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गर्स के आद काल तो स्त्री नूं पशु कहण दा, पछड़िया होया कहण दा तर्कशील लोगां कोल जिहड़ा तर्क सी ओए है कि ये कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके, अवतारी दुनिया दे च नहीं दिखाई देंदी, और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री, संग तराशी संगीत कला दी दुनिया दे च, ज्ञान दी दुनिया दे च, सुधार दी दुनिया दे च, अवतार दी दुनिया दे च पुरुष ही पुरुष अग्गे दिखाई दे रहे ने। इस वास्ते स्त्री दे पछड़े होण दा ये सब तो वड्डा सबूत है, ये पछड़ी हुई है, ये पछड़ी हुई है। आया धन गुरु नानक देव जी महाराज दा जमाना, आपने इस तर्क नो बड़े सोहने ढंग नाल जुठलाया, परे सुटिया, ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते अवतार नु जन्म देने दे च लग गई, वो आप किस तरह ग्रंथकार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते किसे ग्रंथकार नु जन्म देने दे च लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आउंदा, ग्रंथकार नहीं आउंदा, साइंटिस्ट नहीं आउंदा, कलाकार नहीं आउंदा, हर स्त्री कलाकार नु अवतार नु संत नु जन्म देने वाली भी नहीं आउंदी। जो किसी संत नु जन्म दे सकी है, वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसी अवतार नु जन्म दे सकी है और अवतार ने किसी ऐसी स्त्री की कुख चुनी है, तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना संत पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना कोई ग्रंथकार चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है उतनी ही उसनू जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है, क्योंकि उसका समा उसकी शक्ति ग्रंथकार नू जो है जन्म देने दे जो है लग गई। बाबा फरीद कहंदे ने तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ मां। जिसने किसे ऐसे पुरुष नु जन्म दिता है जिसने अपनी जीवन यात्रा नु सफल कीता है, जो फकीर सी, जो संत सी, जो अवतार सी, इस नु जन्म दिता है, पूजन योग है ओ मां, धनता दे योग है ओ मां। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह स्त्री नूं पुरुष दे बराबर ते खड़ा कर दिता, अवतार दी बराबरी ते अवतार दी मां नूं खड़ा कीता, ग्रंथकार दी बराबरी ते ग्रंथकार दी मां नूं खड़ा कीता, और ऐलानिया के आ सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यहूदियां दे धार्मिक मंदिर स्त्री लई बंद ने, इस्लाम दियां मस्जिदां स्त्री लई बंद ने, वेद पाठ स्त्री नहीं कर सकती, जनेऊ स्त्री जो है नहीं पहन सकती, और जैन धर्म ने ते इत्थे तक कह दिता स्त्री शरीर दे च स्त्री दे चोले दे च मुक्ति नहीं हो सकती, स्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लेके ही मोक्ष गति नो प्राप्त करना होवेगा। स्त्री साधना करे, जप तप करे, उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा, फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनु मुक्ति मिलेगी, स्त्री चोले ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, स्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है, और इस दी भावना प्रधान अवतारा नू, ग्रंथकारा नू, भक्ता नू जन्म देंदी है। ए महान है, ए पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा।
1: उच्चारण करो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी का जन्म पिंड तुवान जिला टांक उस धरती ते होया है। जदों आपां जयपुर तो कोटे नूं जाइए जां कोटे नूं राजस्थान विच, जयपुर नूं जाइए ते रस्ते दे दरमियान एक शहर आउंदा है जिस नूं टांक कहा जांदा है। इस टांक शहर तों थोड़ा जा अंदर नूं जा के पिंड तुआन है। ऐद की सबब बनिया सन्मान योग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा और दास नूं भगत धन्ना जी दे उस अस्थान ते कीर्तन औत कथा करन दा सुभाग मिल गया जिस थां ते भगत धन्ना जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती कीती है। भाई साहब नाथ दे नाल सन, कई बिगे जमीन अज भी भगत धन्ना जी दे नाम ते बोलदी है। भगत धन्ना जी दा ओ खूह है कि जिस खूह दे उपर उन्हां ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती और परिपूर्ण परमात्मा ने उस भगत उस महापुरख दे कारज अराज कीते सन। भाई साहब पिछले साल नाल सांसी कठे सी ते उथे भी विचारां भगत धन्ना जी बारे होईयां। मैं सिर्फ उन्हां दे जीवन संबंधी एक अर्ज करनी चाहना खां कि आम तौर ते भगत जी दा जिक्र भाई गुरदास साहब जी दी उस पौड़ी नूं आधार बना के कीता जांदा जिस विच ठाकर दी पूजा दा जिक्र कीता गया है। इहदे विच कोई शक नहीं कि जदो इंसान परमार्थ दे मार्ग ते चलदा है ते कई वरी कितना समा ओदा कर्म कांडां दे रूप विच ही बतीत हो जांदा है। इहनूं ध्यान नाल मेरी बेनती नूं सरवण करियो। पर ओ कर्म कांड तो उदो मुक्त हो जांदा है जदो ओदे अंदर सच्चा ज्ञान ते समर्थ गुरु कोलो ओनूं गुरु दीख्या मिल जाए, शब्द दी रोशनी विच जीन लग पवे ते ओ बाहर मुखी कर्म कांडा तो सदीव काल लई मुक्त हो जांदा है। दास गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत धन्ना जी दे तीन शब्द ने, भावे विद्वाना ने गिनती चार की तीक है, और राग आसा विच तीन शब्द मानते ने, ते एक राग तनासरी विच उन्हां दा शब्द मन्या जांदा है। पर जदों असी गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़दे हां ते राग आसा दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान, भगत धन्ना जी दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान एक शब्द है जिदा सरलेख है महला पंजवां, उहदे विच हैरानगी दी गल है कि धन गुरु अर्जुन देव जी ने नानक पद की वरतों नहीं की, पर उसका सरलेख महला पंजवां है। भगत धन्ना जी का वह पवित्र शब्द जिस विच आरंभता विच भगत जी का वचन है, भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन ही धीरे। मैं सिर्फ बाणी ते फोकस केंद्रित होके कुछ बेनतियां करनियां, क्योंकि भगत धन्ना जी का अंदर आपा वह गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गुरबाणी विच है। जेड़ा शब्द है ये गुरु का आपा है, ये निज स्वरूप है गुरु का। भगत धन्ना जी दे तीन शब्दों विचों एक शब्द गुरु अर्जुन देव जी का, जिस शब्द विच गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने उन्हां भगतां महापुरखां दा जिक्र कीता है जिन्हां नूं उस वक्त दे स्वर्ण जाति वाले उच्ची जात वाले नीवा कहिंदे सन। केवल नीवा ही नहीं कि जे ओ परमात्मा दी भगती समर्पितता दा जिक्र करदे सन ते उन्हां भगतां महापुरखां नूं उच्ची जात वाले जलील भी करदे सन। देखो थोड़ा जा बाणी दी रोशनी च ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਛਿੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਛਿਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਛਿੰਬੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਮੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੁਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਹਿਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੋਕ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। इस बचन नूं ध्यान नाल पढ़ियो। नामदेव जी लई शब्द छीमा वरत्या गया, कबीर साहब लई जुलाहा वरत्या गया, भगत रविदास जी लई शब्द चमार वरत्या गया, सैन जी लई भगत शब्द नाई वरत्या गया। पर सच एवे कि एक हल वाण वाला जिमीदार जिदे लई शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने जाटरो वरत्या है, एक जाट उस दे मन विच इन्हां महापुरखां दे जीवन दियां साखियां, इन्हां दी परमात्मा विच अभेदता, इन्हां दे अंदर परमात्मा दी बख्शिश नूं देख के एक हल वाण वाला जिमीदार परमात्मा दी भगती भी जुड़िया। उहने इन्नी भावना नाल परमात्मा दी भगती कीती, तन गुरु अर्जुन देव महाराज कहिंदे ने उहने परमात्मा दे प्रतख दर्शन कीते, ते जो कुछ उन्हें अपनी जबान तो कहा परमात्मा ने उस भगत दे हर कार्य नूं सिरे ला दिता। ए पवित्र शब्द कहे कि गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम देओ मन लीना, आग दाम को छीपरो होयो लाखीना। एते शब्द छीपरो वरत्या है कि छीम्बा, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम देओ मन लीना, आड दाम को छीपरो होयो लाखीना। बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, ते महाराज कहने नीच कुला जोलारा पयो गुणी गखीरा। रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदय वस्या पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। ए चार महापुरखां दा जीवन सुन के ते इत्थे एक दास अर्ज करनी चाहेगा। तुसी बाणी पढ़न वाले समझन वाले बैठे हो ते भाई साहब जी दी अंदर दी एक सिख है कि जिन्हां दी बाणी असी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ने हां उन्हां भगतां महापुरखां दा जीवन ते उन्हां दी रचना विचों कोई संगत नाल सांझ पाई जाए। मैं कई बारी सोचना क्योंकि सानू जो कुछ शुरू तो सुनाया गया असी ओनू अपने दिमाग विच फीड कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब नू पढ़न दा यतन ना कीता। क्योंकि अज जो मैं बोलांगा आप सुनोगे, जी सदके सुनो, पर एक बेनती है कोई भी बोले खुद गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल आप सांझ पाओ, ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द साडे जीवन दी अगवाई करे, सानू उस खजाने की जानकारी मिलेगी। हुण अज तक साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिन भी इत्थे समागम सी कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे, अज तक मैं बाबा कालू जी की याद विच कदी किसे प्रोग्राम नू अटेंड नहीं किया। हो सकदा कीर्तनीय गुरसिख बैठे ने, शायद इन्हां ने भी ना किया होवे। बाबा कालू जी की यादगार किते ज्यादा नहीं मिलती, उन्हां दी याद विच किते गुरमत समागम नहीं देखे। कारण इक्को, क्योंकि साडे दिमाग विच इक्को गल पा दित्ती गई, वह झिड़कदे रहे वह मारदे रहे उन्हां नू समझ ना पई। पर एक मैं बेनती करांगा, वह पिता ने पिता अपने पुत्र दे जीवन नू चाहुंदा है अपनी बिरती नाल कि बहुत तरक्की करे, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी च देखियो जिथे धरती नू धन किया गया, मां नू धन किया गया, कुल नू धन किया गया, उथे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु दे पिता नू भी नमस्कार कीती गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इक बचन आउंदा है कि धन धन पिता। हुण की आपां बाबा कालू साहिब जी नू धन धन नहीं कहांगे, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। ये चार शब्द ने कि पिता धन, कुल धन, मां धन, ते चौथा शब्द फिर क्या गया गुरु नू तन। हुण ये जरा शब्द आपां पढ़ने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब विच तां बाणी परमानंद दी दर्ज है, पर धन्ना जी नू ए परमानंद बारे क्यों ना गुरु अर्जुन देव ने विच अंकित कीता। बाणी भगत रामानंद जी दी भी दर्ज है, पर चारां भगतां नू विशेष करके हजूर ने अपने शब्द विच उदाहरण वजो लिया, परमानंद, रामानंद, भगत पीपा जी, भगत बेणी जी, भगत तरलोचन जी, बाबा फरीद साहब जी, उन्हां दे भी अमृत बचन दर्ज ने। पर चार भगत क्यों चुने गए? नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत सैन जी। दरअसल मेरा मन एक गल कहिंदा है कि धन गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द दर्ज करन दा इको कारण सी कि एक जिमीदारा करन वाला उन्हूं यह गल दसी गई कि जिन्हां नूं पिंडां दे लोक नीच कहिंदे ने, देख उन्हां उपर परमात्मा दी इन्नी कृपा होई, वह भगती कर करके परमात्मा विच अपेद हो गए। ते किन्ने इन्हां दे जीवन नूं सुन के एक हल वाण वाले ने प्रतक परमात्मा दे दीदार पा लै। रामानंद परमानंद, इहदा मतलब यह नहीं कि उन्हां दा जीवन जां उन्हां दी रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हां संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने। पर इन्हां भगतां ने एक क्रांति लियांदी कि जिन्हां नूं लोग कहिंदे सन नीवीं जात दे, उन्हां ने सच एवे कि समाज दियां नफरत दियां ठोकरां खांदिया होया भी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहब दा एक सलोक है, वह कहिंदे ने सच एवे कि लोग मेरी जात दा नाम लैके मजाक उड़ांदे, मैं शहर विच लंघना, पिंड विच लंघना, ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लैके पुकार दे ने। ते देखो महापुरखां ने वचन दर्ज किते, पर कहिंदे ने परमात्मा मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ए ठोकरा ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती दा एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोल ने कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, हर कोई मेरी जात हसदा है, मजाक करदा है। कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, बलखारी इस जात को जे जपियो सिर जिंगार। कहिंदे मैं कुर्बान का ए दे तो कि जिस जात विच रह के मैनू परमात्मा दी भगती मिल गई। सिर्फ मेरी बेनती सी कि चार भगतां दा जीवन सुन के वह महापुरुख भगती कर लगा। असी शब्द पढ़ लैने आ क्योंकि मैं लड़ी जोड़ना चाहना। पहला शब्द कह के भरमत फिरत बो जन्म बिलाने, तन मन धानी धीरे। ये सारे शब्द विच भगत जी ने किते ठाकुर पूजा दा जिक्र नहीं किया। इस शब्द दियां अखीरलियां तुकां ने कि धन्ने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया, कि धन्ने ने धरती दे सहारे परमात्मा नूं पाया। ते देखो ना शब्द यह नहीं लिखिया कि किसे पत्थर नूं पूज के, उन्हां शब्द वरत्या कि मिल जन संत समानिया, परमात्मा दी भगती करन वाले महापुरखां दी संगत करके। हुण उस तो बाद जिहड़ी अगला शब्द कह महला पंजवां, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को छीपरो होय लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोलारा पयो गुनी गुहीरा, रविदास तवंता ढोर नी तिन त्यागी माया, प्रगट हो वा साध संघार दर्शन पाया। ए बेद सुन कै बेद दा अर्थ सानू रुकना पेगा कि उन्हें आ बेद आ सारे तरीके सुने, इस घटनाक्रम नू सुनिया, उन्होंने तवारीख नू सुनिया, उन्होंने भगतां दे जीवन नू पढ़िया सुनिया। ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, ते महाराज कहिंदे मिले प्रताक गुसाइयां धन्ना वडभागा। ए संत जन जिन्हां दी सोबत करके उन्होंने पाया। मैं सिर्फ उन्हां दे शब्दां नू अपने निर्धारित समय विच सिद्धांतक जो पक्ष है वह अर्ज करनी चाहांगा। पहली तुक है गुरु ग्रंथ साहिब दे राग आसा विच भगत जी दी कि हे प्रभु ऐस जीव आत्मा नू भरम दिया भटक दिया पता नहीं किन्ने कु जन्म हो गए, भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, एक दो नहीं बहुत जन्म हो गए ने, पर अज भी इस अंदर नू समझ नहीं पई, तन मन धन नहीं धीरे। तीन शब्द ध्यान दिया, जे मैं पहली तुक सिर्फ लैनी ते दूसरे दो शब्दां दी व्याख्या करा। तन मन तन नहीं धीरे, ना ता तन ने सदीव काल धीरे दा अर्थ धीरज, धीरज दा भाव अर्थ टिकना। कहिंदे ना ता तन ने टिकना, ना बंदे दा मन टिकदा, ते ना जिहड़ा ए तन दे अमार लाई बैठा। सच एवे ना तिन्ना चीजां विचों कोई चीज भी बंदे दे नाल निभण वाली नहीं। बस इन्हां नूं असीं थोड़ा जिहा विचार लईए। तन मन तन नहीं तीरे। मैं दो दो चार चार प्रमाण सिर्फ अर्ज करांगा बाणी विचों। देखो पहली गल, भगत जी कहिंदे आ तन केड़ा धीरे, ए केड़ा टिका विच है। आम तौर ते सी शब्द वरतने आ कि मौत वेले तन बिनसदा है, नहीं बेनती है, जन्म तो शुरू हुंदा है, मरण तक एदी प्रक्रिया मुकम्मल हुंदी है। ए ता साडे जिउंदे जी अपना रूप बदली जांदा है। जो अज मेरे तन कोल है, अज तो 10 साल पहला स्वरूप नहीं सी, जे रब जिंदगी देगा ते अज तो 10 साल बाद ए चेहरा इस तरह दा नजर नहीं आएगा, क्योंकि तब्दीली है, ए टिकन वाला नहीं। इन्हें ऐसा ऐसा इनू शब्द ए वरती है चेंजेबल है, इन्हें तब्दील होना है। तन आलोक अपनियां तस्वीरां हर जन्मदिन दिहाड़े खिंच के लांदे, ते मेरा ख्याल जिहड़ा 30-32 साल तो तस्वीरां ला रहा है ना, उन्हों एक एक तस्वीर साल बाद चंगी तरह ध्यान नाल घोक लैनी चाहीदी है कि हर साल मेरे शरीर दे विच कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, ये चेंज हो रहा है। बाबा फरीद साहब ने इस तब्दीली दे बारे एक बचन किया, कहन लगे देख फरीद, केवल तेरिया अखां च पानी नहीं, केवल तेरी जबान विचो दंद, तेरे मुख विचो दंद नहीं, केवल तेरे शरीर विच जो परमात्मा ने केस दाड़े रूप ही दिते, कले ए तेरे केसां दा रंग काले तो चिट्टिया नहीं होया। ते आ दिन आ गए ने दसंबर दे पोह दा मकीना चढ़ना है। कहन लगे बाहर खेतां विच बगीचे विच जिथे अत दी बर पैंदी है, झाती मार के देख, जेड़े पत्ते अज तो 3 महीने पहला हरे कोमल ते लोकां दीआं अखां नूं प्रभावित करदे सन, उन्हां पत्तियां दा रंग भी पीला पैण लग पिया। जे पत्ता टिकिया नहीं ते तेरे तन दा की भरोसा, तेरा तां तन भी बनस्पति दी तरह हर साल चेंज हुंदा जा रहा है, तन टिकदा नहीं। बाबा साहिब दा शब्द है कि रुत फिरी वण कंबिया। देखो तब्दीली है, तन मन धन नहीं धीरे। मैं पहली तुक भगत धन्ना जी दी लई, ते सच एवे जे इकले भगत धन्ना जी दी एक एक तुक दी आपां गहराई भी जाइए, ते मेरा ख्याल भावे 5 साल निरंतर कथा करदे रहो तां वी उहदा अंत नहीं पाया जा सकदा। हुण आई शब्द कह तन मन तन नहीं धीरे। बाबा जी ने कहा रुत फिरी वण कंबिया, पत झड़े चढ़ पाहे, चारे कुंडा ढूंढिया रहन किथाऊं नाखे। तन भी तब्दीली की है। उत्थे शब्द है बाबा जी दा, एक होर भगत फरीद साहब दा, कहन लगे अखी देख पतीणियां, तन मन तन नहीं धीरे। अखां वेखण वालियां पतलियां पै गईयां, चेंज हो गईयां। अखी देख पतीणियां, सुन सुन रीणे कन, सुनदिया सुनदिया कन भी एक दिन बोले हो गए। शाख पकंदी आईया कि जिवें रुख ते पत चढ़ावे ते उहदे पत्तियां दा रंग तब्दील हो जांदा है। कहिंदे ने सच एवे कि जिहड़ियां शाखावां तेनू मिलियां सन मना, देख अज तेरे इंद्रियां ते चमड़ी दा रंग भी तब्दील हो गया है। शाख पकंदी आईया होर करेंदी वन, इहनू नैगेटिव अप्रोच नहीं, क्योंकि तुसी सुगड़ सियाने सरोते हो। साडा तन चेंज हो रहा है। भगत धन्ना जी पहली गल गुरु ग्रंथ साहिब च कहिंदे ने बंदिया इन्हां तिन्नां चीजां दा तेनू मान है, मन दा तन दा ते धन दा। मैं तेनू दस देवां ए तिन्ने ही तेरे नहीं, ते इन्हां तिन्नां ने तेरा साथ नहीं देना, इन्हां ने चेंज होना ही होना है। हां इत्थे एक नुकता होर, बंदा सोचना मैं चेंज नहीं हो रहा, पर वक्त उहनू ऐसा ऐसा चेंज करदा है। एक बड़ी सोहनी घटना है बाबा फरीद साहब दी, मैं दो बचन होर सांझे करने ने। पहली तुक मैं अर्ज कर लगा, भगत धन्ना जी कहिंदे तन सदीव काल नहीं रहना। बाबा फरीद साहब दा एक होर बचन है, इहनू नैगेटिव अप्रोच बिल्कुल नहीं लैनी, क्योंकि असल च जिहड़ा बचपन है इहदा अपना सुभाग है, जवानी है इहदा अपना जोश दा हड़ है, बुढ़ेपा है इहदा अपना तजर्बा है। आ जिहड़ी साडी जनरेशन गैप है ना, इहदा कारण ही कोवे कि जवानी कदी भी बुढ़ेपे की गल सुन नूं तैयार नहीं, पर जदों आप बुढ़ेपे विच आउंदा है ते उदो मां बाप कोल नहीं हुंदे। पर एक गल कहिंदा मेरे बजुर्ग सच कहिंदे सन, उदो मैं समझिया नहीं, क्योंकि अपना तजर्बा करना चाहता।

की अगन बूझत जल सरता कै, नाव में जो लागे आग कैसे कै बुझाइए। बाहर ते भाग ओट लीजियत कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजे कहो कट जाइए। चोरन को त्रास पाए शरण गए नरेंद्र, मारे मखीपत जियो कैसे कह बचाइए। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जाए, ता जो व्यापे माया कहो कत जाइए। जे उथे भी अंदर केवलो बिरती रही, केड़ी जगह ते जाएगा। अज आउणा उस स्थान वाल, तन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दा समा कोई सुखैण आया। परत के शहादतां दे दौर चले, ते इथों तक के सिखां नूं गुरु अस्थाना दे दर्शन करन दी भी पाबंदी ला दित्ती गई। नेरे सवेरे आउणा दर्शन करने गुरु अस्थाना ते। समा आया शेरे पंजाब दा, उस वेले उदासी महात्मा जेड़े सन गुरु घरां दा प्रबंध कर लगे। शेरे पंजाब ने बहुत सारियां जगीरां दौलत जमीन जेड़ी है गुरु घरां दे नाम लगाई। श्री ननकाणा साहिब इथे भी महंत सन, अमृतसर साहिब दी धरती ते भी पुजारी महंत ने। मुकदी गल की के गुरु घरां दा जेड़ा प्रबंध है जा संचालन है, वह महंत दे हाथ विच ही, उहदी मर्जी जिओ जा मर्जी करे। अंग्रेज दा समा आया, यह प्रबंध करदे रहे, पर अंग्रेज नूं पता सी कि गुरु घर जेड़े ने यह सिखी दा सोमा ने, ते जे किते सिख सोमे नाल टुटे रहन इन्हां अंदर रूहानियत आउणी नहीं। उन्हें वकारी महंतां दा साथ देना शुरू किया। ध्यान दिया जे सब तो पहली घटना जदों सिंह सभा लहर चली है 12 अक्तूबर 1920 दी। प्यारियो इथों तक हरिमंदर साहिब जदों जांदे हो ना, ते दर्शनी ड्यूड़ी अंदर जांदियां खब्बे हथ एक बहुत सोहनी सुनहरी अखरां विच घटना लिखी है कि कुदरती कौतक। उहदे विच कहिंदे ने इथों तक के हरिमंदर साहिब दे अंदर जदों पुजारी कुकरनी सन कि एक वारी अग दा गोला हरिमंदर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे बिलकुल सामने आ के फटिया। चार चवेरे चानण हो गया, इमारत दा कोई नुकसान नहीं, संगत विचों किसे दा नुकसान नहीं, पर कहिंदे ने एक सज्जन नूं मैं पढ़िया है कहिंदे ने कि अंग्रेज जेड़े सन उह सरबराहां दे राहीं हरिमंदर साहिब नूं भी गहने पवाना चाहते सन के गहना दे दियो जिनी भेट आएगी तुहाडी। उस दिन जदों इह घटना वापरी खामोश होके चले गए। पहली घटना 12 अक्तूबर 1920 दी जलियां वाले बाग वाले पासिओ, इथे गुरमुखां ने सिंह सभा लहर दे कुछ मोढ़ियां ने अमृत प्रचार अमृत संचार कीता, ते उह सज्जन जिन्हों अपने लोग कई वारी चौथा पौड़ा शब्द वरदे ने, उहनां ने अमृत दी दात लई, ते जदों कड़ा प्रसाद दी देग लैके हरिमंदर साहिब आए ते पुजारियां ने अगो इनकार कर दिता। कहन लगे तुहाडी देग हरिमंदर साहिब दे अंदर प्रवान नहीं हो सकदी। ते उहनां ने क्या पड़ियो असी तां गुरु कलगी वाले दे अमृत दी दात लईए। कहन लगे की होया अमृत लै लिया, पर तुहाडी जात तां ओही है ना, अज भी अजी तक ने आ, पता नहीं इह कोड़ दी बीमारी कदों अंदरों निकलेगी। साहब गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़न वाले भगत कबीर साहब ने एक गल डंके दी चोट ते कही सी, कह लगे जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाज काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। ते उथे एक गल स्पष्ट कर दिती के जात दा अभिमान ना करी। ब्राह्मण एक जात हो सकदी है, पर जिवें गुरमुखां क्या पंडित जात नहीं, पंडित जेड़ा वो अंदर दी पदवी है। जिन्हों साहब कहिंदे ने सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश साहब सच्चे पातशाह जी दे उन्हां सिखां कहा कि देख प्रवान करो नहीं मन्ने। उथे गुरमुख फिर सरदार तेजा सिंह जी पुत्र, सरदार तेजा सिंह जी चूड़कणा पंथक आगू आए, उन्हां पुजारियां नूं कहा कि तुसी देख स्वीकार करो। पुजारी इनकार कर गए। उन्हें कहा देखो गुरु ग्रंथ साहिब नूं तुसी भी गुरु मानदे हो ते असी भी मानने हां, झगड़ा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणा विच कर लो अरदास, ते जे ओ हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब दे देणगे ना आपां दोवें धिरां स्वीकार कर लांगे। जे गुरु नूं प्रवान होया ते देग लै लियो, जे ना प्रवान होया ते असीं कदी तुहानूं कहांगे नहीं। उथे गुरमुखो भाई गुरबचन सिंह ग्रंथी सन, उन्होंने अरदास की। भाई साहब

माता जी दुध दा गड़वा लेके आया नाले आप छको अते साहबजादियां नूं छकाओ। कहिंदे माता जी ने आप दुध छकिया साहबजादियां नूं छकाया फिर ये दस पोह की रात लंघती है ग्यारह पोह होता है कचहरी लगती है कचहरी विच पेश करन वास्ते सिपाहियां नूं भेजिया गया लैके आओ। माता जी ने समझाया बचियो सारे तरह के वेखियो साम दाम दंड भेद चारे तरीके वरतदे हुंदे ने लोक तुहानूं सारे तरीकियां नाल माता जी ने पहला ही समझाया हो सकता तरह तरह के खाने देण हो सकता तरह तरह के कपड़े देण हो सकता तरह तरह के डरावे देण हो सकता तुहानूं अड अड करके कहण भी जोरावर मन गया फतेह सिंह तू मन जा कदे कहिंदे फतेह सिंह तेनू कहणगे भी जोरावर सिंह मन गया कदे फतेह सिंह मन गया ऐदां आसे ऐदां तुहानूं पाड़नगे भी एक दूजे दे विरुद्ध भी करनगे सारा कुछ माता जी ने समझाया होया है। सोच दा पत्तर साहबजादियां दा बहुत उच्चा है उमरां ही न्याणियां ने सोच बहुत उच्ची है। हुण छपाई लैण वास्ते आउंदे है माता जी ने तैयार करके छपाइयां दे नाल भेजता सारे राह छपाई समझांदे गए जाके तुसीं सलाम करियो सूबे की कचहरी च जाओगे इदा सलाम करते होंगे इदा समझाते जाते बच्चे ने इन्होंने अधिकारी देनी जदों साहबजादे कचहरी च गए इन्होंने फिर सलाम केड़ी उत्थे गज के आखिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों जोर नाल ते जोश नाल जदों जकारा लाया उत्थे हैरान हो गए सारे भी आ ते लगता ही नहीं सी इदा करन सूबा कहिंदा छपाईओ क्या नहीं तुसीं कहिंदे सारे राह समझाउंदे आए आ असीं ते सारे राह इन्हां नूं कहिंदे आए आ। लो फिर हुण उन्हां ने उसे तरह ही पहलां ते प्यार जे नाल वजीदा सारे बंदे भी कोई नहीं भाई बचियो बड़े सुख मिलने ने निक्कियां तुहाडियां जिंदा ने उमरां छोटियां ने ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜੇ ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲਚ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਰਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੀਏ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਸੁਣੋ

जोशी दे अंदर काफी ज्यादा होए। मां नहीं मनी। आखिर गंगू भी सहमत होया और उपरों उपरों सहमत होया, क्योंकि जे मैं मां दे सामने इस गल दा इजहार करदा कि मैं कम करना ही है ते मां किधरे माता जी नूं जाके दस ना दवे। उपरों उपरों सहमत होया, कहन लगा माता ठीक है, जिवें तू कवे उवे ठीक है। मेरे मन दे अंदर मैल आ गई सी, पर ए रात पई इहदी मां भी सौ गई ते धन माता गुजरी जी भी आराम कर रहे ने, साहिबजादे भी आराम फुरमा रहे ने। इन्ने धन वाली खुरजी चुक के छपा ली है। ए इतिहास दा पन्ना तुसी बहुत वार सुनिया है। इन्ने धन वाली खुरजी नूं छपा लिया है। सवेर होई माता गुजरी जी पुछदे ने, बेटा गंगू अपने कोल इक धन दा थैला सी, मैं रात अपने कोल रख के सुती सा, कोई आया भी नहीं, पता नहीं है धन दा थैला किधर गया। गंगू ने मौका संभालदिया होया गल उतों दी कीती, आख्या माता जी एक ते मुसीबत दे अंदर मैं तुहानू अपने घर दे अंदर लेके आया, अपने घर विच पनाह दिती, उल्टा तुसी मैनू ही चोर ठहरा रहे हो, तुहाडे धन दा थैला मैं चुराया। माता जी कहन लगे, गंगू पुत्र गल मैं ए नहीं कह रही, पर फिर भी चलो जे कोई लै गया होवे कोई गल नहीं, निरंकार ओहदा भला करे। पर गंगू इस ताक दे अंदर सी के कोई बहाना बना के इन्हां नूं पकड़ाया जाए, लालच चल रहा सी दोहरा। ते जद बंदे दे मन दे अंदर कमीनापन बनदा है, मन दी बेड़ी डुबनी शुरू हुंदी है, ते ए मन ढीठ हुंदा हुंदा सारियां हद बन्नियां नूं टप के परले दर्जे दा पापी भी बन जांदा है ते ढीठ भी बन जांदा है। इहदे मन दे अंदर दूसरा पाप चल रहा सी, इक ते ए धन मैनूं मिलिया ते दूसरा इन्हां दे सिर दे उत्ते इनाम भी बड़ा है। मैं इन्हां नूं सूबा सरहंद दे पास जे गिरफ्तार करवा दवां, इन्हां दे सिर दे उत्ते आया होया इनाम ओह वी मेरी जेब दे अंदर आ जाएगा। लालच दोहरा कम कर रहा सी। माता गुजरी जी कहन लगे, गंगू कोई गल नहीं, बेटा मैं तेनू चोर नहीं कहिंदी, जिहदे कर्मां विच सी ओह लै गया, निरंकार उस लै के जाण वाले दा वी भला करन। उन्हां ने अपने सुभा दे मुताबक असीस दिती, पर गंगू अपने सुभा दे मुताबक उल्टे पासे नूं जा रहा है। ये कहन लगा, माता जी तुसी मैनू चोर कह रहे हो, मेरे घर दे अंदर आके तुसी मैनू चोर बयान कीता है, मैं हुणे जाना मोरिंडे दे थाने दे अंदर और तुहानू पकड़ा देना। माता जी कहन लगे, गंगू ए कैर ना कमाई, ए पाप ना करे, ए छोटे छोटे बच्चे, मेरा पुत्र गुरु गोविंद सिंह जिस दिन मैनू मिलेगा ते गंगू जो तेनू धन चाहिए मैं उन्हां कोलों लै के तेनू निहाल कर देंगे। पर गंगू पापी दे मन दे अंदर माता जी दियां इन्हां कईयां होईयां गल्लां दा कोई असर ना होया। गंगू अपने पिंड दे चौधरी नूं नाल लै के चला जांदा है और चला जांदा है मोरिंडे दे थाने दे अंदर। मोरिंडे दे थाने दे अंदर जाके इन्हें खबर कीती और खबर कीती कि माता गुजरी जी ते दो छोटे साहिबजादे मेरे घर दे अंदर ने, उन्हां नूं गिरफ्तार कर लो। ओ छोटे छोटे बच्चे जेडे माता जी दे नाल राह विच आउंदिया आउंदिया गल्लां बातां कर रहे सन, जदों गंगू दे नाल गंगू दे घर नूं आ रहे सन ते ओ बच्चे अपनी मां दे नाल गल्लां कर रहे सन, माता जी असीं जा किधर नूं रहे हां। भावें माता गुजरी जी ब्रह्म ज्ञानी ने, भावें माता गुजरी जी सर्ब कला संपन्न ते सर्ब गुण समर्थ ने, आम मावां वर्गी ओ मां भी नहीं है, आम औरतां वर्गी ओ औरत नहीं है, उन्हां दे जीवन दे साथ निभाउण वाले पति ओ गुरु, उन्हां दी कुख विचों एक ही संतान दा जन्म होया ते ओ संतान गुरु गोविंद सिंह पातशाह ओ गुरु, उन्हां दे दादा सौरा गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी गुरु, उन्हां दे पड़दादा सौरा वाहिगुरु, उन्हां दे सौरा साहब गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी गुरु, उन्हां दे दादा सौरा गुरु अर्जन देव साहब गुरु, उन्हां दे पड़दादा सौरा गुरु रामदास पातशाह महाराज जी गुरु। आम औरतां वर्गा उन्हां दा जीवन नहीं सन, महान सन। रस्ते विच तुरे आ रहे ने, बच्चे पुछदे ने, माता जी जा किधर नूं रहे आ, ते माता गुजरी जी उन्हां बच्चियां नूं धीरज देंदे होए इको ही गल कहिंदे ने, बेटा जिधर अकाल पुरख वाहिगुरु लेके चले जाणगे उधर ही चले जावांगे, अजे ते इस तरह ही कवांगे साडा घर काट कोई नहीं है, जिथे निरंकार

साहिब टिके नी, एक पैर रात गई है रेंदी है, आसा दीवार दा कीर्तन प्या हुंदा है, रबाबी सिख प्यार नाल भिज के कीर्तन करदे ने, ते एनी देर नू सिख आया ते आके गुरुदेव दे चरणा विच अरदास कीती के धन गुरु हरगोबिंद साहिब कृपा करो, घर दे अंदर जाओ, आप जी दे घर अंदर माता नानकी दी कुख विचो एक बच्चे दा अवतार होया, जन्म होया जां प्रकाश शब्द आपां वरतने आ। गुरु हरगोबिंद साहिब गंभीर हो गए अत दे, सतगुरु ने आसा दीवार दे कीर्तन तो बाद अरदास भी शामिल होए ने, ते परत के उसे गुरु महल विच जिन्नू गुरु रामदास दे वेले उसारिया गया है, उसे गुरु के महल विच मेरे गुरु तेग बहादुर जी दा जन्म होया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब चल के गए ने, गुर बिलास वाले ने वचन कीता है जाके इस बच्चे नू टकया, नाल भाई विधि चांदे कुछ विद्वाना ने बाबा बुढ़ा जी का भी जिक्र किया। खैर गुर बिलास वाला कहिंदा है इस छोटे जे बालक नू गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने हथां विच लिया, ते हथां विच लैण तो पहला गुर बिलास दे मुताबिक के सतगुरु ने अपना शीश झुकाया। ते भाई विधि चंद ने पुछया, दाता चार पुत्र अगे ने, अगे भी सब कुछ तकिया, पर अज क्यों? धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने कहा, विधि चंद ए मेरा पुत्र परदे पान वाला आ गया है, ए गरीबां दे दुख दूर करने वाला आ गया है, लोकां दे संकट हरेगा, ते उस दिन अरदास भी मेरे गुरु पिता ने कीती के गुरु नानक साहिब हे अकाल पुरख कृपा करी, मेरे इस पुत्र नू जुल्म दे सामने अड़ खलोण दी ताकत तू ही बख्शी, इनू समर्था बख्शी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने इस पुत्र दी पढ़ाई दा प्रबंध कीता, ते अखरी विद्या गुरु तेग बहादुर जी नू भाई गुरदास ने दिती है, ते कुछ दिन मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब रामदास गए ने जिथे बाबा बुढ़ा जी अंतले समय टिके ने, ते सिख विद्वाना दे मुताबिक कहिंदे ने अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर मैं शब्द वरत रहा क्योंकि भावां गुरु नहीं बने उस वक्त शब्द त्यागमल ते तेग बहादुर ही विद्वान वरतदे ने, पर मैं गुरु शब्द इस करके वरत रहा कि मन नहीं मनदा कि कला तेग बहादुर जां त्यागमल कहा जाए। गुरु तेग बहादुर जी नू रामदास लै गए ने गुरु हरगोबिंद साहिब, ते बाबा बुढ़ा जी दे घर छड्ड के आए ने, ते एक नाल बेनती कीती है, बाबा मैं कल भी अर्ज कीती सी, बाबा बुढ़ा तू वडभागा सिखे। कहन लगे बाबा बुढ़ा जी ऐस मेरे पुत्र नू तुसी सिख्या देनी है, ते उस वक्त बाबा बुढ़ा जी दे नेत्रा विच नीर आ गया, चरना ते ढह पै कहन लगे मैं अलपागा। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब ने कहा सी, बाबा तेरे अरदास नाल ता इस घर दी जड़ी पीढ़ी अगे तुरी है, ऐसे करके मेरे पुत्र त्याग मल नू भी तुसी अज तो बाद गुरमत दी सिख्या ते इन्हां नू तुसी सिखी जीवन दी सेध देनी है। कुछ दिन गुरु तेग बहादुर जी बाबा बुढ़ा जी दे कोल रह के सिखी जीवन दी जा सिखी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज उन्हां ने उस वक्त चार जंगा लड़िया ने, ध्यान रखना अमृतसर दी धरती ते इक दृष्टांत है, गुरु तेग बहादुर जी दी उम्र बिल्कुल छोटी है, ते सिख विद्वान कहिंदे ने गुरु तेग बहादुर जी कितना कितना समा एकांत विच बैठे रहिंदे ने, कदी बोलदे नहीं, कदी किसे नाल ज्यादा फालतू बात नहीं कीती, एकांत विच नेत्र बंद कर लेने ने, चुप करके टिक जाने, ते कितना कितना समा समाधि विच रहिंदे ने। ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जदो अपने सपुत्र बाबे गुरदित्ते दी शादी कीती है, ते उस वक्त मेरे गुरु तेग बहादुर जी दी उम्र 4 साल दी सी। कहन लगे बरात चढ़ी है, सारे लोग जेड़े ने ओ बरात नू शामिल ने, किसे दा ध्यान किसे वाले, किसे दा किसे वाले, माता नानकी ने अपने पुत्र तेग बहादुर सतगुरु जी नू कीमती पोशाक पहनाई है, सोने दे कंगन पहनाए ने, क्योंकि शाही ठाट वाले गुरु दे पुत्र ने जेड़ा मीरी पीरी दा मालक है, जदो बरात तुरी है ते गुरु तेग बहादुर जी की तकदे ने के छोटे छोटे बच्चे ना सड़क दे किनारे ते खलो के बरात पैवेंदे,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ

चित्त मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनो, आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने, इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। जिमें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी विचार आप संगतां नूं सरवण कराई जांदी सी, गुरमुख प्यारियां ने अपराला कीता है, ओ इतिहास दियां पोथियां प्राप्त करके अज तों फिर उस लड़ी नूं आरंभ कर लगे ने। आप जी जिवें भली प्रकार जाणू, इतिहास एक उस जंजीर दी तरह जेड़ा साडे